to honor me.

problems come to our Argentina में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया, दो गोल अर्जेंटीना के साथ। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शुरुआती मुकाबले में आज भारत के पाकिस्तान से होगा।

0: सुन रहे हैं और सीखते हैं। संतोष जी, आपका भी विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। पंडित जी, वायलिन की विनम्रता के बारे में हमने आपसे चर्चा की, जिस तरह से भारत में उसका आगमन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने कैसे उसे अपनाया और कौन कौन महान कलाकार हुए हैं इस वाद्य को लेकर के, और फिल्मों में जिस तरह से वायलिन का उपयोग हुआ है, ये सारी जानकारी पाने के बाद अब हमारे कान आतुर हैं आपका वायलिन वादन सुनने के लिए। तो राग शंकरा से हम शुरुआत करते हैं। राग शंकरा के बारे में, उसके चरण के बारे में हमें बताइए।
1: राग शंकरा देखिए बहुत प्राचीन रागों में से एक राग है और शास्त्रों में इस राग का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन जो पंडित लोग हैं या अवसाद लोग हैं इस राग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर जो इन्होंने इसको सीखा है। हमारे गुरु जी ने मुझे जब राग शंकरा के बारे में डिटेल बताया तो मुझे लगा कि उनका ज्ञान अगर नहीं मिलता तो ये राग से मैं वंचित रहता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं शब्दों के बजाय कुछ बजा के बताऊँ तो शायद ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। देखिए, राग शंकरा जो है उसमें आरोह में षड्ज के बाद गंधार, फिर पंचम, फिर निखार भैरवत और आसक्त का साग, यानी गंधार, पंचम, भैरवत और निखार और साग, ये पांच पौड़व जाति हो गई थी, पांच सुर लगते हैं। और अवरोह में चाने भाव का जापा गाय था, मध्यम नहीं लगता है, केवल मध्यम अवॉइड होता अवरोह में। अब इस किताब को केवल बरतने से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कैसे राग शंकरा प्रकट होता है, तो ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बजा के बताने के लिए।

0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल भंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत आत्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित एस एल भंडारा जी का। पंडित एस एल भंडारा जी को इस अंक से तबले पर संगति दे रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी, जो

पीछे लग रहा है, खड़ा नहीं लग रहा है, खड़ा लगेगा तो शास्त्रीय रूप से अमान्य होगा,

मेरे पर ये बंदिश जो आपने सुनाई लगता है इसकी शास्त्रीयता को इस वातावरण की शास्त्रीयता को ऐसे ही रखा जाए और एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो पंडित राजन मिश्र की

सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल संगारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।

गुरु के बोल थे शंकर जय कृष्ण की मैंने पिछले गीत का रिकमेंड लिया सुनिए बंधन फिल्म का गीत लीला चित्रित की आवाज है प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सरस्वती देवी

लोगों को साक्षात करना चाहते हैं।

देवी के चरणों, गीतकार के जी एस कश्यप और संगीतकार सरस्वती देवी ने।

समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। इतनी दिलचस्प है कि मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बात की, जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे रविंद्र भारती पर हैं।

की आवाज़ों में पूर्णिमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे कन्या।

0: मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे अनजानियों के बोलते और कल्याण जी आनंद जी की
1: नसीर को ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला और फारूक को बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पढ़ने गया, नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाकी,

प्यार किया तो डरना चाहिए साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली। कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी।

0: था कि मुझे एस्ट्रोल के लिए स्वीकार किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी है।
1: जाली उनकी जादू थी। इस कार्यक्रम में जादूबारी अभिनेता सदाशिव अवन

प्रस्तुति आनंद बक्ष के बोल के राहुल देव बर्मन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के भी कार्यक्रम यही

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बातचीत, 7 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में घंटों के लिए वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक के संपादकीय में लिखा।

अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है दिल्ली। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, किरणें चांदनी में घुस कर खोला नहीं समाता है, लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर न रहें और जीवन में व्यय

की अपनी जीत सूरज बनने की जिद करो और जब मैं बन सकूं सूरज तो चिड़ियो बनकर अंदर उगाकर अंदर की घर से आपको देखने वाला पथ प्रदर्शक बनो जब रात की काली चादर पर हिंदुमाना शुरू करें

0: बंद दरवाजों पर प्रस्तुत होती है।
1: खून से है क्यों भीगा, किस लिए शकील अपना, इस जख्म क्यों मैं खाया हूँ, पत्थरों को मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बातों में रेडियो था, एक गजल दो जवानों का गम दूरियां थी और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने।

0: सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: हालात पैदा कर दिए सर बहुत ज्यादा। हम स्टूडियो में रात में काम करते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुझे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी समय थी।

trondini.

Thank you.

sua cara

that comes to

0: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: इतनी दिलचस्प है कि आप,
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है।

कि ये सेवा कार्य इसमें आप सुन रहे हैं, जिसमें लोग कार्यक्रम आइए लेते हैं बहुत सुंदर सा।

0: शरीर में होता है। तकरीबन इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआर प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंस योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक कोई बीमारी कम हो जाए।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।

और मैं बहुत विरोध किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे मुंह निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात

फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीर, तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ लिया है। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, मैंने जिसका रोल करने में क्या मजा

0: रविवार के सितारे हैं, मजूर चाय और ही कार सभी रात में
1: इसकी हालात पैदा कर दिए हैं। हम इस स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने सुनने के लिए क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी समय की थी।
0: जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर हम सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश।

today, please be starting with that or a satin, so we start with something and I'm not. किसी लोक कार्यक्रम में अपनी किसी ने माननीय अवस्थी की आवाज में

से बहुत स्वागत है आप सभी का सुप्रियो कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के लोगों की प्रतिभा के लिए अभिनेत्री राज बब्बर जी का जन्मदिन समस्त विविध भारतीय परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। को याद दिला दें कि आज स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सुनिएगा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। सुनना ना भूलिएगा। सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट में मेरे पिताजी शिवाजी अमरापुरकर एक

आपके हृदय आवाजें शंकर महादेवन सूरज जगन और जय वरुण की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने बोल लिखी थी और शंकर एहसान लौंग ने

0: 20.
1: Ele manda que bate essa

चक्रांत कुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा अपने आगरा से की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद

मुंबई से जाना है। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहाँ आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे, ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगर द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे तीन सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर

और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बी आर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने

soldi infatti. Il suo invece della carte di Noroi, Achokumar, Rajgopar, Belabur o Lalita Pawar. वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे

जिसका ध्येय था वही फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य इंसाफ का तराजू। इस सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर।

किए थे आर्टिस्ट नारीराज से ही बब्बर से विवाह किया। आज से राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से सटीक बब्बर है, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता है।

साथ कई फिल्में की जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन,

कई राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा की पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने, सरकार ने शिक्षण देना आरम्भ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल सिमाना जी से, जो खुद एनएसएस थे। आप स्वयं पंजाबी कला मंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राजबब्बर से एक दिन कहा कि देखो राजबब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राजबब्बर को दिख गई। सन 1972 में राजबब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहाँ इनके सीनियर थे नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी, महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाशी दौर में इनकी दाराजिन की फिल्म काफी पसंद थी। फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी के रिसर्च का हिस्सा बने, लेकिन राजबब्बर क्योंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, दर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपोर्टरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि पी आर रूंगी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से

मिस्टर शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसलिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से ये किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउमेदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली, पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दी गई, पर आशा इनकी नहीं छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए, जिसमें जितेंद्र रामेश्वरी और सारिका थी। फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश पाप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1986 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन

उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। ये बात दहली, घायल, रोदाली, माया में इंसाफ, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और केवल जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया। 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया। वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसे फिल्म से जुड़कर

speak a 50 message that he would

Ты мне не

ही एक कहानी समेत हो।

عندما يشيء ولم

Tonight. Hi, guys, what's up?

पर्दे के पीछे रहकर हमारी सामाजिक व्यवस्था

हमारे सफाई कर्मचारी सरकारी शिक्षक दूर दराज के गाँव में बच्चों का भविष्य सवा रहे हैं। इस सेवा के लिए हर साल कुछ खास और अनोखे कार्य के लिए इन सरकारी सेवकों को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड मंच करता है और सबकी टीम है सरकारी तंत्र को और ज्यादा डिजिटल पारदर्शी और हर वर्ग के लिए सुलभ बनाने के ताकि कोई भी नागरिक सरकारी सेवकों को एक छोटा सा थैंक यू कहना चाहिए।

Si tu me demandes si c'est une question politique,

prima di

आज की बात करते हैं श्रोताओं जो की दुनिया में कुछ स्थान रखती है। बात अगर 23 जून 1757 की की जाए तो दिलाता है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के डिजिटल दौर में हम जो बोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत दरअसल आज ही हुई थी। जी हाँ, 3 जून 1868 में क्रिस्टोफर एरिस्टोटल को चीफ कंप्यूटर के लिए पेटेंट मिला था। इसी से लगभग जुड़ा कंप्यूटर की बात अगर हम तो कंप्यूटर साइंस के जनक और आधुनिक कंप्यूटर के नींव रखने वाले महान व्यक्ति एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ था 3 जून 1912 को। हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और सफल चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। भारत की अखंडता को बनाए रखने में उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण

जुलाई 1901 में कोलकाता में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक डायरेक्टर 30 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वतंत्र भारत में देश के पहले उद्योग क्षेत्र बने 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति उनकी देश आंदोलन और उनका अमर बलिदान आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी उन्हें हमारा शत

within our community.

शरीर गतिविधियाँ बढ़ा देते हैं। वजन नियंत्रित रखा जाए तो प्री डायबिटीज के होने वाले खतरों से बचा जा सकता है। मित्रों, समय समय पर एक नियमित जाँच करवाई जानी चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और सारे उपाय भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने चाहिए। वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है और उसका उपाय तो

vedeți într-o dacă e bună, mai este de hantie, eu pe aia am zis să fie în ziua aspect de lucru, și să fie health protective, să fie să fie hona, care am mai digital sistemul de rătăcini, e un proces de interdeșe, am fi să nu vină acolo de lucru, dar am mai învățat sau în să vii pe acolo de lucru. Nu am mai făcut să fie, name, sound, WhatsApp, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने ऐप को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले बात करते हैं जीमेल की। इसलिए जीमेल में मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको जाना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी टैब खोलिए, इसमें देखिए कि रिकवरी कोड नंबर और ईमेल सही है या नहीं, साथ ही टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू है या नहीं। योर डिवाइस में जाकर चेक कीजिए कोई अनजस्ट डिवाइस तो लॉग इन नहीं है आपके मोबाइल या कंप्यूटर से। इसके बाद आधार के लिए आपका आधार सुरक्षित रहे, इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इसके लिए आप यू आई डी आई पर जाइए, ओटीपी लॉग इन करें, ऑथेंटिफिकेशन हिस्ट्री देखें कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है जिसे आपने अभी तक नहीं किया हो बायोमेट्रिक लॉक भी लगाइए। इसके लिए माय आधार लॉक ऑप्शन चुनें और बायोमेट्रिक लॉक जरूर लगाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते जानकारी हासिल करके

também, porque ele faz isso também, gente.

क्यों? इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।

0: सोच रहा हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाने
1: तो मौका दे पाए ना
0: मौका तो किसी ने नहीं सोच रहे हैं ना कि मदद किसी
1: को मुझसे
0: तुमसे तो अच्छा बता किस

0: शून्य एक चार दो
1: ओ सात शून्य शून्य शून्य एक चार दो चार दो अभी फोन लगा

0: हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखे मुल्क के सभी गाने के लिए, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी सब ऐसी थी।
1: और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिरा का लिखित गीत युगल स्वर सुरेश बाडकर और

उत्तम जगदीश चंद संजी, जिनका नाम भी वारिस और गर्मपल्ली कलाकर, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें ये इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाए।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: एक बात,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आपके दिमाग 24 जून 4 बजे
0: फिर विविध चित्रकार है।

सेकंड लाइन सेकंड हिसाब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। विनोद जी ने एक रास्ता निकाला, तो उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी, ओढ़नी सुनरिया तोड़ी।

0: ऑप्शन कर रहा है। आपसे साझा करेंगे अपने लेखन यात्रा।
1: थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा में ऋण का प्रयोग करता हूँ। आज भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे ऋण निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात सजन बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके ऋण मेरी प्रमुख

स्वच्छता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों? सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे कतरी बारिश में या चिलचिला की धूप में खुद उस धूप को कहती है, बारिश को कहती है, तूफानों को कहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रहती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सफर में आप मेरे साथ हैं ना?

सफर सुरीला ही बना दे, इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ही उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहाँ बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच

जो मुझे या नहीं या कोई आसान सफर में हमारे साथ रहे ना।

खूबसूरत इंसान देखती है, लेकिन आप मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और मध्यम बारिश में आपको कुछ बारिश

में ऐसी छठी को देखा है, बताइए तो कहीं भी जरूरी नहीं कि वहाँ बारिश ही हो रही

कुछ कम शब्दों में हमें लिख दीजिए जहाँ से इस्तेमाल किया गया है। हम सुनाई नहीं बस एक खुशी की बात।

आगे बढ़ते हैं सुनील सफर में भी आगे मौसम कैसा है। मोहम्मद रफी साहब हैं।

खरीदी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वही ईश्वरता लिखते हैं कि फिल्म श्री जासूदीन का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने आपकी दुकान में लगवा लिया था। क्या

वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बचाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर देखा है आपने। एक छोटा ने लिखा है कि सुलीला सफर के सभी छोटा प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत को अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक छोटा लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़ कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुलीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटा ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छात्र के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाया केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिनों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माई गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। एक छोटा लिखते हैं कि इस नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत ज्योति साहिबा अच्छा मैं कि नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम

लिखा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिन, शांत बैठे संभव नहीं। यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल, और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा के दिखावे की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों के बीच एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सरावर हो, भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं छतरी रखने की जाए सफर में। ध्यान रखिए जहाँ एस सी वर्मन का संगीत है, इस बार सारे रुद्रांड के बोल हैं, गीता दत्त और सैक्सन की आवाज है, फिल्म का नाम है

शाम को आधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन शहर में कई जगह तेज गिर गई है। अच्छा, कितनी तेज बारिश हुई थी? वही शोभा लिखते हैं कि हमारे गांव कड़ा बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहाँ 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वही छोटा लिखते हैं कि राजा महाराजा और सम्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियाँ लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही कहा एक छोटा ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई है, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है तेज बारिश में। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं, और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक छोटा लिखते हैं कि बारिश और पढ़ने का मोह रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। महाकवि कालिदास के मेघदूत स्खंड कार्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिनों को बेसुध बना देता है और अधिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा आपने। और वही छोटे लिखते हैं छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बधाइयां आपको बहुत बहुत। वही छोटा लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छठी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी उनकी और आपके बजाय हुए गीत आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। हम आपको एक बात सुना चाहिए, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है

मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांच किया गया है। तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि सुबह को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये आइटम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि वे आज कुछ ऐसे गीत है जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपके बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे तरह से ढूंढ पाए और आपको भी खुशी हो। मैं एक छोटा लिखती हूँ कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखी थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता है। श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमाल की तो अपने आप में ही एक मुकम्मल तरीका है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारे बारिश रही हो और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हो तो उस पर का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी गर्दी की एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रोमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है जिसमें आज के सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंदी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं। आवाज

के लिए भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली। बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुनिए सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। मैं एक छोटा लिखती हूँ कि जब से विविध भारतीय उद्घोषकों ने जिसमें आप भी हैं बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं। क्या बात है। मैं एक छोटा ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की इस सीजन से पहली बारिश वर्षों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, इसलिए बारिश की शुरुआत हुई। मैं एक छोटा लिखती हूँ कि हमारे शहर अजमेर में अधिक तेज धूप है, तापमान

में सभी आइटम आपकी पसंद की डिश मिलने वाले हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रहने की प्रतीक्षा अभी भी लू चल रही है। बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए। लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए हमारे साथ। हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप

कविता लिखने की बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं तो फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी। बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि बारिश के गाने, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल

जीतोगे और यहाँ कहीं उस परिदृश्य में। लेकिन हाँ, जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मारी है नारी है वहाँ पर छतियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखे। एक छोटा लिखिए कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियाँ बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आपको लंबी कविता लिखी है, वैसे तो आपके बहुत गहरी बात लिखती है। अगर आप लिखती हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियाँ लिखी ताकि हम उसको शामिल कर सकें। वही एक छोटा लिखते हैं कि ये वर्ष एल नीनो से प्रभावित है। ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे श्रोता और भी आगे लिख रही है इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग से देश को ये आशा और विश्वास है झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है। तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा उपाय है जिन्होंने प्रकृति का नाश किया।

से कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी खेती पर चली गई। वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग गए हैं। अच्छा लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल बारिश आएगी अपने शहर में। वही एक छोटा लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूँ और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब मैं कहीं भी छाता लेकर नहीं जाऊंगा। अरे तो बारिश आएगी, जीत जाएंगी, याद रखिए अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वही एक छोटा लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने नाम अपने अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला न जाए। यहाँ के ड्रॉइंग में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है टिफिन में भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वही छोटा लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुँचाने विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा में हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ ही सब कुछ अच्छा होने

मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक छोटा लिखते हैं कि हमारे शहर धार एमपी में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और सबसे किया गया कि पिछले वर्ष हमारी सचिव को ले गया था और आज ही नहीं लाने पड़ेगी। एक छोटा ने लिखा है कि छत्रपति संभाजीनगर से पुणे रेल बस ट्रेवल में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस ही भूल गया हूँ। गई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं फूल। वही यशोदा ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही दिल्ली भारतीय बस सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और यशोदा लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी

गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियाँ रंग बिरंगी छतरियाँ लेकर जाती है पार्क में। कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। सबसे लिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से किशन कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बच्ची की रचना कल्याण जी आनंद जी की ध्वनि।

बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंड हो गई, मजा आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक छोटा लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ डेढ़ घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हम एक देश की बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है। कहीं कहीं मम्मी छोटे लिखते हैं कि सुबह सफर में छठी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से

दिखाई नहीं देते हैं और वहीं श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और बिजली का मजा खूब आ जाता है। वहीं श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी। बहुत सुंदर। वही लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर उत्साह की छींटे घेरते घेरते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी।

जानती आ रही है कि संगीत था और अब सुरी लहजे पर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़े, ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए

संसद है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर न रहें और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को

नीचे सूरज बनने की ये करो का सूरज अपने अंदर उगाकर धीरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बने। जुगनू जब रात की काली चादर पर तो अक्सर अंधेरे में बच्चे को उम्मीद से सूरज तक पहुंचने का एक सिला मिल जाता है और जुगनू अपनी रोशनी खोने पर प्राणी की उंगली पकड़ उसी सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

मिट्टी में रखी जुगनू ही तो है माना, जुगनू सूरज नहीं हो सकता और न सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू

न चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता। वो तो बस अपने को पूरी तरह से निकाल कर अपने आस पास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी।

0: पीपल्स पद और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: मैं रात का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी सीखा मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम ये खरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नीचे आता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।

0: को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 30 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष

के माध्यम से ना हो, सदा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है। और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीपीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेगी।

0: नापेड़ में एक प्रकार से ग्राफिक डॉटिंग दृष्टि ईआरपी और नापेड़ कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए थे नापेड़ वो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था। आज नापेड़ ये सारी पहल करकर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों को सेवा कर।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु निर्भय और राष्ट्रीय

जलंधर योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने

के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अनेकों की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से

पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता तथा शिक्षाविद और देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद

festival has happened. In the Irani Murti festival, petroleum or petrol chemical utpadon ki utpadon, vitran aur bikri ko adhikrit kiya gaya hai. Amrita ke Rajkot Prabhag ne bataya ki 7 din ke liye jari kiya gaya saman license 21 agast tak prabhavi hoga. FIFA विश्व कप में आज अमेरिका के साथ दशहरा ने ग्रुप डी मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक मालिका मुकाबले में अर्जेंटीना ने 1000 गोल के मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIS प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जर्डन जबद्ध के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में

0: is going to come in at the beginning of the book, and God brings him to the day.
1: अपने वाले सामने आ रुक रुक के मेरा जी न जला सूरज से किरण बादल से पवन सब चल के छुपेगी ये तो बता

अपने वाले सामने

0: प्रति की आकाश में अगली अपनी फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध खारिजी पर आ रही है साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राही आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरा अवस्था से मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। अब भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात का व्यंग बोल लेते हैं, ये मजे मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी

0: सितारे हैं, मशहूर शायर और गीतकार शकील अजमेर ने
1: इन हालात पैदा कर दिए हैं। हम इस खूबियों में रात में काम करते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने सुने थे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगेश्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाने फिल्म रूपमती रही बोल पंडित भरत की हैं और संगीत।

0: के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आपके मेहमान 24 जून शाम 4 बजे
2: लता मंगेशकर का और फिल्म प्रेमदत्त।

प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी, छोड़ ली चुनरिया।

दौरान उन्होंने बयान के लिए एफआईआर के प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने एफआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और किसी कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो जोर है। एफआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आज नासिक की नीलामी पोर्टल शुभारम्भ हुआ। इस दौरान केंद्रीय संचारिका मंत्री अमित शाह

0: उन्होंने बिचौलियों पर अंकुश लगाने पर जीत जीती है। जीवन उत्पादन से खेती में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया।
1: नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, अब नाफेड इस सारी पहल करके

0: को लगभग केंद्र सरकार आभार जताया है।
1: लाभ तो छत्तीसगढ़ को होना ही होना है, जाहिर सी बात है कि जब देश विदेशों तक हमें हमारी क्राफ्ट की पहचान जाएगी। आर्टिजन को लग रहा है कि नहीं, हाँ अब जीए टैग मिल गया है तो अब प्रोडक्शन भी बनेगा हमारा, डिमांड रहेगी तो ज्यादा हाइक होगी इसकी, दूसरा क्राफ्ट और ऊपर उठ जाएगा।
0: सरायकेला खरसावां जिले के थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से एक डकैती मामले में फरार चल रहा था।

semanitia. Però sin capami is a classic for the tradition of the family, so I'm going to get this for the family for the tradition of the family. This is all the tradition of the family. Look, how many are this in my story, as you can see, इस दौरान युवा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे और इसके साथ ही स्वतंत्र रांची से समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब आज हमारे सामने बैठी है मंजरी जी। तो मंजरी जी आपको मेरा नमस्कार और सभी शक्तियों को सभी शाखाओं को आदि शिवस्व का नमस्कार। आज की तुम्हें और सुनने वाली सभी शक्तियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का सिखाता है नमस्कार। और आज हमारे साथ आती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो मुझे बता देते हैं आज की हल्की फुल्की बातें। घर में आंगन क्यों था जरूरी?
1: बिल्कुल आज हम घर आंगन को लेकर आए
0: हैं। जी आंगन में हम लोग हमारे साथी लोग सच्चा लोग जुड़ गए हैं। तो अगला विषय क्या है आपकी?
1: बिल्कुल अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को जो कि सह संस्थापक है मैड स्पीच जयंती। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है वो है आग में घी डालना।
0: इस पर सब लोग अपने अपने विचार डाले और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें। और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था, कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
0: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी

0: बिल्कुल और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। उनसे बताइए तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट और एप्लीकेशन का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abhsa.abbn.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
1: और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है जहाँ हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं और मेडिसेक जो इसकी एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
0: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इसमें दवा देने का टाइम हो गया है। और वेलबींग और या फिर माई फिटनेस, वेलबींग यानी कि आपकी वेलबींग या आपकी सेल्फ स्वस्थ है वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस कॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहाँ बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही SPW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 1-4567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा, रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक भी SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन से तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी है आरटी।
0: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक चीज़ से कर सकते हैं। अच्छी तरीके से
1: आरती देखो हमारी साथी लिखती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरीके की चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगवानी है, तो उसके उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेबसाइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगवा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन को मासिक पेंशन मुहैया कराती है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही है। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनसे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और इस तरीके के अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मैं भी इसी के साथ समय हो गया इस छोटे संक्रांत का।

0: शेयर कर रहा है सुनने के बाद, अब वो कौन सी बात करने जा रहे हैं तो मैं ऐसे ये बता देती हूँ कि कभी आदमी घी डालने का काम किया है।
1: मैंने कभी नहीं किया है आदमी घी डालने का काम, और उस घी को निकाल के खत्म किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
0: ये तो बहुत अच्छा घी डालते हैं, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर इसमें सही बीज बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है। आरती नहीं मान पड़ा हम
1: ये ना हो
0: चक्कर में
1: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे झगड़े के बाद वो लाल भूसे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: और देखो इस ताकि देखिए आग में घी डालना मुहावरा पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, इस चीज को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है। और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं अच्छी बात है, कहते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल फायर बोला जाता है।
1: उन्होंने
0: बात लिखी उन्होंने
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह से आग में घी डालना शुरू कर देते हैं, जो परिवार समाज देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आज में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती
1: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आगे बिगाड़ कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और ऐसी कई बार ऐसा होता है कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा हो गई और उसको सुनकर के एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग जाए कि इससे तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसा कह रही

0: भाई बहनों या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर इसको समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद है वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है। क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते थे याद आता नहीं कितने ऐसे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जैसे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आज मैं भीगा मेरा,
0: बल्कि हमें इस चीज को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध ये रहते हैं ना तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा यहाँ पे विराम देते हुए एक तरह से गीत सुन लेते हैं।

तेजी से झड़प होती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आदमी भी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा के बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं

0: की बात शुरू कर देते हैं जो परिवार समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत है उतने मतलब चाहे वो देशों के बीच हो चाहे वो लोगों के बीच हो घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट करें अपने मन में गुस्से नहीं करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल, और लाइफ का त्यौहार लिखते हैं आज की आज आज लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है ना, लगा के तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके इस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: ये भी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे, कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो वो उनका अर्थ वहाँ पर वहीं तक सीमित रहते
1: हैं, समझाने के लिए ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक तरह से भी सुने थे,
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।
0: कार्यक्रम के तहत देवदर्शन रूप अगरबत्ती रूप से खूब एवं

0: मंत्री अंतर के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और छोटा भाइयों के साथ साथ आज तुम्हारा भी स्वागत है।
1: बिल्कुल हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
0: जी,
1: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर सचित देती है।
2: कौन से है क्यों भीड़ा जिसने ये शकील अपना जख्म क्यों में छाया हुआ पत्थरों को बना अंदर से दर्द पड़ा हुआ मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझी और इस गजल के साथ साथ

0: मंगलवार रविवार के सितारे मशहूर शायर और गीतकार शकील
1: ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हम इस स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या मिला मुल्क के सभी गाने से मुझे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
0: हाँ तो वही अब बता दी जाएगा क्या सजेशन लेते हैं।

0: संस्थापक नरेंद्र स्ट्रीट देव की जो है अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसाय के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ हाथ मिलते हैं

0: उन्होंने दृश्य संचार और इंस्ट्रक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की
1: और एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु

0: प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध जति व्याकरण पर था, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ, मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्रशेखरन के साथ मैडस्टेट बैंक की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी एआई तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्य स्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आज की जब भी हम ऐसे सच्ची पहली में लेके आते हैं, ऐसे विषय सच्ची विषय के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं जो उन्होंने कार्य किया तो उसको सुनकर समझ कर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें, एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत होगा, हम कुछ भी सुनेंगे।

0: की बातें करनी है।
1: देखो पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आलसी में, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़ी पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे और वहीं से सब्जी

0: बड़ी पापड़ खिचड़ी चार ये सब चीजें डाली जाती थी और उसमें पूरा घर जुड़ जाता था।
1: बिल्कुल हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था,
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्यौहार होते थे, जो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता तो सब आंगन में जो खाना खाया जाता था वो भी सिताई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आनंद का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में यहाँ तो क्या हमारी यही चलती
1: कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू करते हैं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: याद है ना जब नाव कागज के बनाए थे हम लोग, आंगन में जो पानी भरता था और जब निकासी की जो जगह होती है ना उस जगह पे हम लोग कपड़ा चूस दिया करते थे पानी में।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं सभी की होंगी, सभी सभी के घर आंगन जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे,

0: अभी तो हमारे साथ ही है लिखते कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आस पास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खंडी करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे की साझा करते आंगन में पूरी चरपाया दिखा देते थे, तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती है आंगन
0: मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था। जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो दुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है। और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल हमारे साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में सन के गिरते या छुपन छुपाई खेलते थे। और आज के फ्लैट की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्रकृति का एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्रकृति की रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी, मतलब सब लोग

0: सुंदर था वो समय और आज भी उनके आंगन वो गीता वगैरह लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और समृद्धि यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उन्हीं सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू थे और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का ये विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करें और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारी छोटा जी जिनकी आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यही बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूँ साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथ लिखते पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठ कर महिलाएं

0: अपनी सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख की बातें जाती थी और गपशप होती थी और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूँ साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल, और हमारे चाची लिखते पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, खनन में बैठ कर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी चौरे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें तो ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता देती थी।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं। फूल का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं। घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: कितनी सारी यादें सबके ताजा हो गई। और आंगन में यार आंगन में झूला भी तो होता ना, आगे गर्मियों में अपना सारा पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन गए हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहाँ धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियाँ आसानी से होती थी।
1: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर रहते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यही बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूँ साफ करना जैसे काम यही हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में तो कहीं नहीं समझे देखा है कि वो चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, क्योंकि किसी किसी के दिन में भी बनता था और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी रुपये किया करते थे, शाम को बैठ कर लिखाई
0: लोगों के समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था। क्योंकि वो प्राकृतिक जो हवा उसमें आती है आपको है ना, और दूसरी चीज़ें वहाँ पे आप बैठ के अपना कोई भी जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
1: तो उनको भी सुधरता हुआ चुचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो दाने डालने में बहुत मजा आता था।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता भी लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर रख पाते थे।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छपन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या मुन्ना पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में हुआ करते थे। तो उनका भी एक अपना मजा जो है आज भी,
0: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, मुझे सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
1: और जहाँ जहाँ धूप जहाँ

मूंगफली भी खाते थे वहाँ पर बैठ के आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पूड़ियाँ याद है ना, पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में, उसी काट के उसका मतलब प्लान था। लेकिन वो भी खाते, आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जो आपको नमक करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो, किसी चीज़ का आनंद उठाते हैं, गीत गाना चाहते हैं।

पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति के इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में एफआईआर की प्रक्रिया के तहत

0: de ese estudio me queda de vida.
1: Gracias.

जाए, किसी को बेहतर करार दिया जाए, लेकिन बहुत कुछ ले के उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसा हुए, बहुत छोटा था,

तो ये सब जो बताए हुई सब मेरे अंदर कहीं कहीं जमा होती है। और फिर छोटी उम्र में इश्क भी हुआ,

0: ये लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रोड चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में, सुपारी में सुपारी खाई जाती है, वो बड़े पैमाने पे बड़े स्रोत से वो काटी जाती है और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात

0: बात हुई रेडियो का और ऐसा रेडियो स्टेशन जो और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में या उसको समझने में या उसके महसूस करने में। तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली मतलब बस हाँ कर दिया ऑन और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे करता था मैंने उसको कुछ बुलाया हुआ भी नहीं सरकाया भी नहीं। वहीं से एक गजल बनी थी और वो गजल थी दो जमा दो का हम दुखिया समझती है जो हुआ मैं दीवाना बेड़िया समझती है। बाम से उतरती है जब हसीन दो चीजा जिस्म की नजाकत को सीढ़िया समझती है। ये गजल कोई गा रहा था और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई और सेम मीटर में है ना। अब वो गजल तो मैंने जाहिर कर दी मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है जिसे मक्ता कहते हैं
1: शुरू हो गई मतलब आप के साथ साथ
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुताबिक हो गया एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
1: और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर श्लोक
0: वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम की कौन सा स्टेशन था मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तकलीफ शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे हटा देते थे। लेकिन की और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती खत्म नहीं होती वो एक जरूर होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल
0: याद है? गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो जाहिर कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है शायर का नाम होता है तो गजल का आखिरी शेर होता है वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा

0: शहर क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना तो जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ही आपने शायरी की।
0: कोई बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिल का गवाह है।
1: क्या बात है सचिन साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी लगती है। यहाँ पर कोई गाना आ रहा है।

ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ।

0: तो हम शुरू करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताई है हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: दरअसल एक बुनियादी दुख है, दर्द है वो बढ़ जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म बढ़ते ही। बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से निकल जाता है, तो वो आपको लगातार और शायर होने के लिए होना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राणी है। दुख एक मेरे यहाँ बहुत थे, एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की देख रहा था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहेंगे बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई, तो ननिहाल भी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार

दुखों की कोख से शायद पैदा हुए। तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जाहिर होकर साफ ज्ञान मिलेगा।

वुबा की ये करी और उससे इस करते थे जो दुनिया में चीज हुई ठीक है। तो आप सोचिए कि उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का

0: 是五个字，你替我解决。
1: सुकून मिलता है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए।

काम में कुछ होटों से बातों बातों में मुस्कुराया करते।

कभी हिदायत नहीं होते। कुछ याद है?

continue to sort of these things.

0: का साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
1: हाँ, सूरत में
0: जी, सूरत में। तो वो क्या बात है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में रहता था और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था। अच्छा, आप उससे पूछते हैं उसमें सारे बड़े शायर, मतलब मीरा फारसी, जावेद अख्तर, मोहम्मद अली और शीन काफ निजाम,

मतलब ये वही गवर्नर था और प्रोफेसर वारिस अली साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू बहुत बड़े नक्काब थे वो प्रोफेसर वारिस अली साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे वरना वो आते भी नहीं। तो बहुत बड़ा मसाला था और उसमें

फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुकदमा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शहर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। जो लोकल शहर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया स्कूल का अपने नाम सामने। अच्छा उसमें कुछ मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे, तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शहर बैठे हुए। अब सूरत के शहरों को पढ़ाना शुरू किया और भाई तो मकामी शहरों को नहीं सुन रहा, पब्लिक जो है फॉर्मेलिन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शहरों को नहीं पढ़ाया जाए। अब वाल्मीकि नगर के जावेद साहब के और मोहम्मद अली साहब और निदा पादरी साहब और इन सबसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी।

से भी मोहम्मद अली साहब से भी इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी, सरदार इमाम सिद्दीकी इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी, इनका निजाम साहब से शायद पहले मिला हुआ था। तो हुआ क्या था कि

और वो क्यों हो गई थी कि निदा खाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो लखी मतलब उनका सवाल ही ना है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर लिखा है जो दो जिल्दों में दो अवधियों में है, तो ये पहली जिल्द थी तब तक दूसरी हो सकती थी दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी,

से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, और सूरत में बहुत अच्छा कमा रहे थे। तो अब जब ये हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो मेरा साहब ने एक काफी हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी में और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने। उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं भाई वो मुशायरा है मालती जोशी फलो वो भी जाएंगे। तो अब वो चूंकि मिर्जा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और

जो मैंने मानसी जी की मदद कर दी है ना, हालांकि कोई दूसरा अगर होता तो मेरा फाजिल साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेयर नम करने की हिम्मत नहीं करता। हमने ये जो कर ली और शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊँ, मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊँ अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए। अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक कि मतलब जिसमें शुरू हो गया, मैं ढूंढने लगा इतनी दाम मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया। उसके बाद तो दो करोड़ वो सितारा जमीन पे टूट गिरे हमारे साथ रहे और यही का हो जाए। अब मेरा साहब ने उसके मुझे माला पहनाया और मालती जी को धोखे लेके

0: काफी दोस्ती हुई, मोहम्मद अली भी साथ में हुई और मैं फिर बम्बई आया तो मेरा साथ से भी मिला और मेरे साथ से भी मिला।
1: जी जी तो जब आप

0: सुने कि आंखों में रात रह गई। तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जो खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पर भेजा करते हैं।
1: हाँ, ये शेयर भी कितना यूनिक है
0: जी।
1: मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊंगा, सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देख पाऊंगा।
0: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी

and they, most of them, I think, you know,

साहब जरा मुझे देर लेने दे। हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त है जो उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक थे वो, तो सेवी अली नाम था उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से जुड़ाया था, नंबर भी उन्होंने दिया था मुझे। अनुभव सिन्हा साहब

कहते हैं और फिर मुझे हाँ, तो लिखने पढ़ने वाले आदमी है वो किताब पढ़ते हैं और आगे लोगों का कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो, तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था, तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है जो दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फ्रेंड है।

से भरी हुई मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए सोची कि देखो इंसान जोखिम ले रहा है, उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है वो अच्छी है, धीर और अच्छी तक आर्टिकल 15 छप्पर अलीग ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़ी खेल की खेल है, ये खेलें भी बड़ी है,

0: जितने अनुभव सीधा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है,
1: ठीक है,
0: वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तुमको अनुभव का
0: सदा तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सीधा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले। तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके जनरल का नाम है बनारस, वो खुद बनारस के रहने। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियाँ खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं, सब फिर भी वहाँ जाता हूँ। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एक आध जो बच्चे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला,

0: तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही समय मेरा रोने लगा। मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव से कहा कि आप इसमें गए। तो पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पर नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है। फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा सादगर जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था। लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे बने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली है, गाने बहुत हिट हुए।
1: फिल्म का नाम
0: जी उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा।

them that I need neighborly. Namaskar, good evening, dosto. मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया. आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं राज बब्बर की फिल्म की इस गीत के साथ, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन. अभिनय की सादगी, व्यक्तित्व की गरिमा और कला के प्रति समर्पण की मिसाल है राज बब्बर. दर्शकों से अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं. उनके जन्मदिन पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं. साथ ही सुनाते हैं उनका ये नगमा.

फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पर नहीं गया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासी, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसका पिता रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।

मारने को मारने बगैर आएगी। श्याम राज ने जिसको लिखा आदेश की वास्तव की बनाई धुन।

के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन। उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। इतनी दिलचस्प थी कि आप खोजा, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की, जितना ज्यादा

बारे में जीरो फिल्म का गीत अनिल गुर्जर की आवाज में इस बार कानी के बोल में अजय अतुल का संगीत।

0: nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाए।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाते तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राज बब्बर की फिल्म वारिस का ये नगमा। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और तर्क बनाई है उत्तम जगदीश ने।

from 2015, which is 2015, I've been able to come on to

Mongol,

0: दिल्ली अगर शिक्षा भी बहुत गंभीर को सुझाव देंगे जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र लिख दें मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़ी।

ज्ञान लोक रंग और आज इस कार्य के

कार्यक्रम

for them to come meet with the mayor for a time.

से बोझ है और कुछ नहीं।

स्ट्रीट पे था और शेख चटर्जी आने की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म की हसी की।

0: कोरियर के आमतौर अभी डीएलएफ बड़ा तरफ से जानकारी ले रहा है उसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कोई भारत का नागरिक छूटेगा नहीं सबको अपने शामिल कर दें उसके साथ साथ में कितना भी पहले से गलत प्रवृत्ति है तो उसके बाद कितना भी गैर भारत नागरिक का नाम है वो अपने रिन्यू करके उनका कोई काम करें
1: और गरीब कल्याण के बाल बच्चों के मुख्यमंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एक समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ

0: कर रही है तो इस तरह का पश्चिम बंगाल बदलाव दिख रहा है।
1: उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि लोगों ने समर्पित करने का काम किया और जो उनका सपना था जो उनका सपना था कि देश में वो पर वहाँ वो निशान नहीं चले और इसी मूल मंत्र को लेकर

परिस्थिति पैदा होगी जिसके लिए जिले की कंटेनमेंट प्लान बना लिए गए हैं। वहाँ की जलवायु, फसल, उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की योजना बनाई

manera verde,

Grazie a tutti.

उत्तर ये व्यवधारित केंद्र है 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 मिनट हुए हैं श्रोताओं, आइए जोड़ते हैं विविध भारत।

सिमरन थे भारतीय सेना के गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे गाया है गुलाम अली ने, साथ ही संगीत दर्ज किया है गीत का।

0: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। बाकी जो इतनी दिलचस्प है कि आप खुद, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने माने पेंटर अखिलेश जी, जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आपके दिमाग 24 जून शाम 4 बजे
1: जिनकी बांसुरी की मधुर ताल से मन का हर कोना झंकित हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: आजादी के गंभीर के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरवाजे के गुंडा में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने इससे मेहनत की।
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ रजत भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में सीखा गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंख से बहुत अपॉर्चुनिटी है
1: जादू की इस कार्यक्रम में जादू वाले अभिनेता सदाशिव अभनापुर के

शैतानी चीज में क्या करूं। धनुष जी ने एक रास्ता निकाला, तो उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्ट एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना खोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इनकी बांसुरी की मधुर ताल से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से

0: घुटन है, उस घुटन को दरबारे के गंभार में जब तक न लगाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है।

as I send thee.

सुल्तानपुरी न्यूज बीच को लिखा था, दिन बनाई थी लक्ष्मीकांत की

judgment seat.

feminine in me.

सौभाग्य है।

0: उस घर आ जाते हो अरे भारतीय नारी का तो जो भी बच्चे हैं वो तो कभी तो नहीं आते
1: और सुनो इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है
0: यही कि बच्चे तो भगवान से प्रेम होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपका जाती है सुख में दुख में
1: बस बस मैं सब समझ गई अच्छा एक काम करोगे
0: काम अरे तुम कहो तो जान भी आ गई है
1: बात समझ जाना महेश तो बड़े हो गए हैं
0: तुम
1: उनका तो सहारा ही है मेरा बुद्ध भी स्कूल चले जाते हैं
0: हाँ हाँ
1: तो यही कि रमा और मुन्ना उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाओ
0: क्या कहा ऑफिस ले जाओ
1: मुझसे तो अभी हिम्मत नहीं रही कितना बोझ संभाल
0: ऑफिस ले जाया करो

0: जब मेरे हाथ से थमाकर कहा, क्या कहा? आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता दे, हाँ शाम का क्या प्रोग्राम?
0: प्रोग्राम क्या नहीं, वही मिलेंगे।
1: नहीं सुन, हाँ शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए सुबह चलेंगे, तो ठीक है ना?
0: हाँ बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा,
1: तो मैं बात करती हूँ। जी 6:45 हम पहुँच रहे हैं तुम्हारे यहाँ।
0: ओके
1: ओके ओके, 6:45।
0: हाँ
2: अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चले गए?
1: ओ हो, देर ना हो जाए कहीं।
2: राहुल ये क्या है?
1: चाय, अच्छा चाय को बाहर रखो, और देखो मैं बात करके भेजो।
2: जी हाँ
1: मैं चाय पीता हूँ, तुम जल्दी कर।
2: सरला, अरे ओ सरला,
1: ओ तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
3: तैयार होने में कौन से जीत लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा? तैयार होना ही नहीं है? क्या कह रही हो तुम? ये
3: कुछ कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, कुछ भी नहीं होता, तुम्हें बताओ ना मुन्ने को।
1: ओ मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
3: तुम क्या बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है। परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चल जाओ।
3: ओ तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती? मुझे तो तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊँ?
1: मुझे को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊँ? फोन इसी का संभाल लेगी ना, अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वहाँ देख जाएंगे।
3: तो आकर देख जाएंगे, इसके लिए रुपए कहाँ से आएंगे? कल से चाय बनकर 50 रुपए फूक दिए।
1: क्या कहा?

0: अच्छी नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा कुछ वस्तु का अभाव है तुम्हें।
1: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए। बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी, सब प्रोग्राम करते हैं, वो तो होते ही रहते हैं।
0: दीदी आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कंटिन्यू ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है। सर संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुझे तो हर खाली में उनका साथ देना चाहिए।
1: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
0: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं। दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी। अब इसका उपाय क्या है, जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियाँ, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा, पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
1: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपकी सहयोग की है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
0: हाँ दोस्त ये ठीक कह रही है, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलों बराबर होने चाहिए। कहता तो कुछ ठीक है, वास्तव में मैं पलायन

सारे स्वयं से सुनो अपने स्वागत है। पहले बात को सुनवा रहे हैं ये पहला गीत मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा, प्रीतम ने संगीत किया।

tiga kerak.

ऐसा क्या है

से रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और साथ ही के स्वरों में प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा।

सेकेंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी

televisión, ¿no? Santiago Domínguez, ¿sabes si vos sí?

द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अल्का याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने दो रजत सहित 30 बच्चे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का

cook

Grazie.

0: people, it sets up the agenda of what we're going to do next week for the coming year. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जंगल मोमर्स से गुजर सकेंगे। श्री जॉनसन ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: राष्ट्रपाल परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ और विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और

क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट।

Geht die Hannah

था और भी

टाइम पे मैं इसको खाते तुरंत हो गए, तो ऐसी भी कुछ

इस तरह एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख करने के लिए समारोह रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद

be a good idea.

फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने, जहाँ थिएटर का अपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल सिमाना जी से, जो खुद NSDC थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSDC से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSDC में दाखिला लिया, जहाँ इनके सीनियर थे नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासर किया। NSDC करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSDC के रिसेप्शन का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर जो कि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी उनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपोर्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलाहाबाद में दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिर

सोहेल के द्वारा उनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद जोहरी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से

की शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाव नदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली, पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दी गई, पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए, जिसमें जितेंद्र रामेश्वरी और सारिका थी। सुपरहिट फिल्म इन आपका तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं।

किस्मत बदल गई। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म बैनर तले 1992 में, कर्म योद्धा 2003 में, काश पाप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन

से अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी उनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहली, घायल, रोजाली, माया में इंसाफ, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और सेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया। 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया। वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी फिल्म से जुड़कर

त्याग की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। दिनेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़नी

जिंदगी में जो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था, एक अनजाने

कमजोर बना लेता है। जब इंसान महज लफ्ज का जादूगर हो जाता है, जब इंसान में जज्बात नहीं रह जाते, तो वो इंसान नहीं बल्कि एक पुर्जा में तब्दील हो

जिंदगी जैसे अंधेरे से गिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता, इसलिए अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल।

करते हैं, हमें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं, फिर नहीं समझ पाते मोहब्बत।

खुशगवार यादें, कुछ जग भरी यादों की लहरों से हमारा मन शोकित होता रहता है। कुछ दर्दीली यादें हमें सिखाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं। कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में

रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने

Nathan could ask, Jesse, indeed,